0: एक्सपर्ट्स इस मामले में वैभव सूर्यवंशी पर मिले जुले रिएक्शन दे रहे हैं। भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने एक्स पर लिखा, इन मैचों में उतने कैमरे नहीं होते जितने हम आईपीएल में देखने के आदी हैं। सुपर ओवर में नो बॉल का फैसला विवादित था और सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए आने में श्रीलंका ने जो देरी की उससे इंडिया ए की टीम काफी नाराज थी। भारतीय टीम की नाराजगी समझ में आती है जबकि श्रीलंका ने जो किया वह पूरी तरह से माइंड गेम्स का हिस्सा था। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोरिया मजूमदार ने इस वाक्य को लेकर एक्स पर लिखा, वैभव सचिन से बहुत छोटे हैं, उन्हें महान खिलाड़ी से सीख लेनी चाहिए, खेल के मैदान पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे यकीन है कि आज की घटना से वो सीखेंगे, हम सब गलतियां करते हैं, वो भी अलग नहीं है, सीखना और बेहतर होना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सीनियर जर्नलिस्ट कुशन सरकार ने एक्स पर लिखा, वैभव सिर्फ 15 साल का है, वह अपनी यात्रा के दौरान सीखेगा, हमें बच्चे को थोड़ा मौका देना चाहिए, ये मत भूलिए कि वैभव वापस जा रहा था लेकिन श्रीलंका के बॉलर्स ने उसे उकसाया था, वह इसलिए लौटा क्योंकि कुछ कहा गया था।
1: जी बिल्कुल जी, वैभव आप अक्सर कहने छोटा, मैं कई बारी अक्सर थोड़ी देर पहला भी देख रहा सी जिस तरीके नाल एटीट्यूड होना या एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बड़ी वधिया गल हुंदी है क्रिकेट दे विच किसी भी गेम दे विच, क्योंकि तुसी जिन्ना ज्यादा अग्रेसिवनेस हुंदी है तदे तुसी वधिया प्लेयर बन पांदे हो, जां कह लो वी ओह जरूरी है, बट ओनू कित्थे दिखाना ते कदों दिखाना किन्ना क दिखाना ये बड़ा मैटर करदा।
2: मैनु राजेश जी एक गल याद आई, लिटरेचर दी मैं स्टूडेंट रही हां, एक बारी बुल्ले शाह परमात्मा नाल जुड़िया होया है ना, ते वो अपने मुरशद कोल भज्जिया गया, मतलब अपने जेडे टीचर गुरु हुंदे मुरशद, कि उनू ए ज्ञान हो गया कि भी अल्लाह मेरे अंदर है
1: जी,
2: ते जिवें ही उसनू ज्ञान होया ते वो रौला पांदा बाजारां दे विच भज्जिया फिरदा, मैं अल्लाह रे मैं अल्लाह रे, ते उमर छोटी है ते ज्ञान होया ते एकदम बोलना शुरू करता, ते उदे मुर्शद ने कहा कि हां तू अल्लाह ही है, पंजाबी दे विच अल्लाह कच्चे नूं भी कहंदा है, भी हजे तू कच्चा है हजे भी तू जे तेनू ज्ञान होया पहला उसनू अपने अंदर वसा, उसनू एनालिसिस कर, फिर तू देख कि हां दुनिया नूं केड़ी चीज दसनी है, तां वो अल्लाह जिहड़ा हुंदा है हजे कच्चा बच्चा हैगा, ते वैभव दी ओही गल है भी हजे टैलेंट ता परमात्मा ने इसनू दित्ता है पर हजे पकड़ दी लोड़ हुंदी है बच्चियां नूं, ते एकदम मैनू बुल्ले शाह दी गल याद आ गई कि उहनू उहदे मुर्शद ने कहा कि हां तू अल्लाह ही है हजे तू कच्चा है भी तेनू पकड़ दी लोड़।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीजा ने अक्सर बंदा सोच तो लैंदा बट इट्स नॉट कि भी तुसी पीक ते पहुंच गए हो, गल ये होंगी भी पीक ते तुसी टिकदे किन्नी देर हो, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पीक ते कोई भी बंदा बड़ी मेहनत करके पहुंच जाता बट साल लगते हैं तुहानू उत्थों थले तक जान च, जे तुसी किन्नी जल्दी थले आंदे हो ते किन्नी जल्दी उपर जांदे हो यह बहुत ध्यान रखने की गल है। सो इस करके आई थिंक भी इन्हों इस गल का ध्यान रखने की लड़ है, बट चलो आप अकाल तख्त वालों जी सीएम साहब न जोड़ा ऐलाना गया वो बारे थोड़ी जी गलबात सुना दें, तो फिर इस तुम बाद अपन गलत बता जिस तरीके करा तो फेसबुक के सारे दोस्तों के नाल
3: सिखां दी सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं गुरुदोखी अते खालसा पंथ विरोधी दस्या है, हालांकि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस नूं सियासत तों प्रेरित फैसला दस्या है, यह फैसला असल विच मुख्यमंत्री दी इक कथित वीडियो दे बारे आया है, यह वीडियो की है, हुण जदों पंजाब दे मुख्यमंत्री सूबे दे मुखी हन अते ओह अमृतधारी सिख भी नहीं हन, की अजिहे विच अकाल तख्त साहिब ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ।
4: ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
5: ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
4: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
4: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application which lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillon ate Inderjot Kaur Tillon ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillon, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
5: Regulated Canadian Immigration Consultant.
4: 403-225-1111.
3: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotox, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
6: Perfect. Welcome to Sabrang Radio 94.7. All the listeners, today's program, my Rajesh and my Nal.
7: Charandeep Kaur.
6: ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਚਰਨ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ?
7: ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਸਨਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 17 ਤਰੀਕ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ
6: ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ।
7: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸੌਂਗ, ਤਾਂ ਕਿ
6: ਜੀ। ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ

0: लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
1: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
0: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
1: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर,
0: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
1: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी,
0: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दिया 6 लोकेशन दा सांझा फोन नंबर
1: 403-835। बाय बाय।
2: सलाम नमस्ते सस्कार आदाब या अली मदर, मैं आपको होस्ट जलाल आपकी नाजिर, आप से सुन रहे हैं सलाम नमस्ते ख्याल के रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम। जी आज जो है मंगल का दिन है, तो हाजिर मामूल सलाम नमस्ते ख्याल का सेगमेंट आपकी खिदमत नाजिर है। 8:09 हो गए, इंशाल्लाह आई विल बी विथ यू अंटिल इंशाल्लाह 9 o'clock, तो आपने जाना कहीं नहीं है। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो यू कैन लिसन एंड लाइव ऑन 94.7 एफएम। अगर आपको देखना हो तो यू कैन वॉच ऑन लाइव on Facebook as well, just search my name Jalal Ismail R and you can watch today's show as well. To lekin sabse pehle my co-host Salma ji bhi yahan par maujood. Hello Salma ji, kaisi hain aap?
3: Hello Jalal, thank you so much. Sabse pehle as always, sabse pehle aap sab logon ko jo hame sun rahe hain aur jo hame dekh rahe hain, salam namaste adab sat sri akal ya ali madad and a beautiful thodi thodi barish wali sham, lekin badi khoobsurat sham hai, to ummeed hai aap enjoy kar rahe honge. Sardi bahut zyada nahi hai to acha lag raha hai. To aap jo log hame dekh rahe hain wo dekh sakte hain ki hamare jo mehman hain wo aa chuke hain aur aaj wo kis silsile mein aaye hain wo humse baat karenge ki kya hone ja raha hai aur kab hone ja raha hai. To ummeed hai aapka aur hamara saath 9 baje tak rahega aur aapne apne liye chai ya coffee bana li hogi ya sharbat bana liya hoga. To hum baith ke baatein karenge aur aap hame acche se dekhiye aur suniye.
2: Thank you so much Salma ji. Yahan par hamari Calgary mein ek organization Mantra, जो कि आई थिंक दिस इज देयर सेकेंड ईयर मे बी थर्ड ईयर, जितना मुझे पता है जितना मुझे याद है, इनका एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होने जा रहा है, उसका नाम है रंग। रंग मीन्स कलर, जिसको वो कहते हैं कि रंग फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ये बहुत ही प्यारा, जो जितना मैंने सुना है कि ये इवेंट होता है, तो इनकी इनकी यहाँ पर पूरी जो टीम जो है यहाँ पर मौजूद, इंक्लूडिंग देयर प्रेसिडेंट, बोर्ड मेंबर and board members, yes of course. Like, you know, let president. Me start with the president, Sunita. Hello Sunita, welcome to the show. Thank you so much.
4: Thank
2: for coming in.
4: Thank you so much Jalal ji and Salma ji for thank having you. Us it's a pleasure.
2: It's your first time on the show, on the radio?
4: Yes, so, on, yeah? Yes, on Salam Namaste, first time.
2: Oh, thank you so much, thank you so much. Phir unke saath sunshine of Calgary,
4: yes.
2: hamare studio mein itni hamare studio mein itni sunshine badh gayi hai ab. रोशनी ज्यादा बढ़ गई है, मुझे भी जो है अपने सनग्लासेस चाहिए होंगे। बीना जी यहाँ पर मौजूद है, बीना जी
4: किसी बीना जी की जरूरत
2: नहीं। बीना जी वेलकम टू द शो।
5: अभी राजेश जी बोल रहे थे मैं हर रोज आ रही हूँ।
2: इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग?
5: It's a good thing for me. Anybody who wants me to come and, you know, promote any of your shows or any of your events, yeah, I'm here.
2: So you know, August 7th, like Joy Show, to already promote karenge. Yes, you already, you already with us.
5: Yeah, I commit. Uske pehle August 2nd ka bhi kar rahi hun.
2: Yes, obviously.
5: We are here today to talk about Mantra Art Society of Calgary.
2: Yeah.
5: It's a non-profit organization with a mandate to build an ecosystem to promote, learn, showcase, and get all the local
4: talent
5: involved in a classical folk music and a dance.
2: Perfect.
4: Languages as well. We focus on languages also.
5: Oh, we also teach languages, and our president is a very hard worker. I've never seen a president doing that much work. Usually presidents actually become a president just for a name.
2: But my nickname is president.
5: No, I'm telling the truth. Okay? And they've given me a vice president's title.
2: Oh,
5: but,
2: geez. Okay,
5: but
2: okay.
5: I'm not doing much.
4: Okay. Yeah, you She's, are.
2: और फिर बीना जी के बगल में वन ऑफ रियली रियली ह्यूज हेल्पर फ्रॉम द डे वन, जब से हमने रेडियो शो शुरू किया है, वन एंड ओनली रेनू जी। रेनू जी वेलकम टू द शो।
6: नमस्ते,
2: नमस्ते, नमस्ते। आज हम ऑन एयर पे आपको थैंक यू बोलते हैं, व्हाट यू डू फॉर ऑल ऑफ अस।
6: सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यू
4: आर सच अ गुड सपोर्टर, ऑलवेज ऑलवेज फॉर एवरीवन,
6: जस्ट लाइक बीना, यू नो आई लव म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट।
2: बीना द वाइस प्रेसिडेंट।

0: any existing something little.
1: Yeah, I'll let you know. For sure. Yeah. I never say, this is my thing. I never say no to anyone. And if I can do a small little thing, I'll do definitely.
0: Thank you so much.
1: Yeah.
2: All right. So we have Sunita Alokum. How do you say your last name?
3: Alokum.
2: Beena Asher and of course the Renu G from the Mantra, jinka event hone ja raha hai June 27th, 4 p.m. at Rocky Ridge, jo ki apna BMO's, it's a BMO theater. At YMCA, which is in the Rocky Ridge. आज का जो show सलाम नमस्ते कल के इसको sponsor क्या है? Control Soyra, इनका phone number 4032901111. Beena जी Honda चलाती है, I don't know why, but she can get a brand new Toyota from the Control Soyra. Think Toyota, think the giant Control Soyra. You can visit their website, Beena ji, when you go home, cstoyota.com.
4: Red is her color.
2: Red is my color. Red Controls ka bhi raha, wo laal hi hai. Phir humare dusre mobile mod ke specialist Rubina Kasim Ali, inka phone number 4238707066. Na, she works for TD Bank. If you need any mortgage, she's the best person to give you the best rate. 4038707069. Hamza Bhatt from the Bhatt Kray Bengatwal. If you need for any reason, for any event or anniversary birthday party, you can call Hamza, our good friend, 587-352-0094. Agar Beena ji ko jewelry chahiye, Nasim Jewelers Calgary, Pakistani design in Canada.
1: Dekho unki ring, dekho.
2: It's not from Nasim Jewelers. Inka phone number 825-987-5000. 825-987-5000, our good friend Shehzad Mian Saab. Of course, he can help you. And Aizba Bashir in the Cross Iron Mall. अगर आप मिस्टर ग्लासेस चाहिए,
4: I actually have his glasses.
2: 4037203937. 4037203937. Eyes by Bashir in New Horizon Mall. So we'll take a small break, guys. Just stay on. हमारे पास टाइम बहुत है, आपके पास भी टाइम बहुत है. So let's talk even more about the event and few things general about the folk.
1: Sure.
2: Folk dances from India. Like, हमको इतना तो नहीं पता. We'll be very honest.
1: That's right.
2: लेकिन what do we expect? At on June
1: 27th, yeah.
2: कि क्या क्या होगा, किस तरह की ड्रेसिंग वगैरह होगी, because we've seen it in the movies,
1: yeah.
2: लेकिन कभी इसे लाइव नहीं देखा हमने. तो I think it'll be nice to talk about it, then people will get excited even more.
1: Break
2: के बाद क्या होगा? Everything.
1: Yeah, break.
2: We'll be break के बाद. We'll be right back. Thank you so much for listening and watching. Salaam Namaste Calgary on Radio Susangam 94.7 FM.
5: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो. किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट.
2: पाकिस्तानी डिजाइन इन कनाडा.
1: देखो उनकी रिंग देखो.
2: इट्स नॉट फ्रॉम नसीम ज्वेलर्स. इनका फोन नंबर 825-987-5000.
5: सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे. साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण. ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते. पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां. पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो. तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 4039470060 जां आओ यूनिट 530669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार.
6: रोड ते नवा ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है. होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है.
5: सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो. ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया. ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो. तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन. बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208.
6: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ. ਮੈਟਰਸ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸਬਡਿਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬ੍ਰਿਕ

0: या फिर फोन कर लो 4039036757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
2: कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी। इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 5876174696। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।

0: समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फेर पिछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने।

0: ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बस शर्त है तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उन्हां नूं फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लब्भो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
2: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
2: अपने घर दा दूजा नाम आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
3: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
2: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाउणे ने, सिरदर्दी तो भी बचना, ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
3: सिर्फ घर खरीदण लई ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
2: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
3: ਰਿਐਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-617-1868।
2: ਜੇਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ mandeep.realtor।
3: ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਰਿਐਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 4036171868।
5: ਫਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਲਈ ਬਰਗਰ ਲੈ ਲਈਏ?
6: ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ।
5: ਮਾੜੇ ਨਖਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਥੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ।
6: ਓਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
5: ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਰੌਂਠੇ, ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ, ਓਪਨ 24 ਆਵਰਸ, ਯੂਨਿਟ 2154-43-10104 ਐਵੇਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਕਾਲ 403-400-6661
7: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
2: ताजियां सब

0: साल हो गया गाना सुनती हूँ। बस कैलगरी च कार लैंडी हूँ, फीलिंग आई ले जायो। वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है। उन्हां दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिदा है।
1: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार एक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनिया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे आ।
0: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो। जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
2: ओहो, आज फिर नहीं लोड मिलिया।
3: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फिर नहीं मिल होना दो दिन।
3: ओहो, रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
4: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
5: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे।
4: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसे झंझट दे मूव कर जांदे आ।
6: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूवी।
7: श्रोमणी अकाली दल पंजाब दी बहुत बड़ी पार्टी, पंथक नुमाइंदा जमात, किसानां दी भी जमात कही जाती है। 2017 तो बाद सत्ता तो बाहर है, सत्ता तो ही बाहर नहीं बल्कि सीटां घट के बहुत सुंगड़ गईयां। उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल दे विच नवीं रूह फूकण दे यतन किए जा रहे हैं। हालात बदलणगे कि नहीं बदलणगे इह ते बाद विच पता लगेगा, लेकिन हाल की घड़ी श्रोमणी अकाली दल वलों अपना एक सीनियर वफद कनेडा की धरती ते जिहड़ा उह भेजिया गया गलबात करन लई, विचार वटांदरे करन लई, अपनी गल रखण लई ते अगां दी रणनीति बारे इत्थे रहिंदे पंजाबियों नूं समझाउण लई कि असीं की करांगे। इस बाबत गलबात करने लिए सरदार तजिंदर सिंह विडुखेड़ा सीनियर वाइस प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल, साहब गुरप्रीत सिंह चब्बर मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते स्पोक्सपर्सन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साढ़े स्टूडियो में मौजूद ने। सब तो पहले इन्होंने सज्जणा का स्वागत करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। तजिंदर सिंह जी, इस तो पहला के असी सवाल जवाब करिए, ब्रीफ दे विच इत्थे इस वफद दे आउण दा ते सीनियर लीडरशिप दे इन्हां आगुआं दा आउण दा मकसद की है?
8: देखो हीर साहब, बड़ा क्लीयर है कि पंजाब पंजाबियां दा एक भरम भुलेखे पा के जिहड़ी पंजाब दी खेतरी पार्टी है उहदे बारे च एक बड़े वड्डे भुलेखे एन आर आई भरावां च पाए गए, गलत धारणा बनाई गई और वह समय के नाल हुण साफ हुई और मंग की इत्थों दे लोकां ने कि आओ आप बैठ के गल पंजाब दी करिए। यह मुहिम असी शुरू की न्यूजीलैंड तो, न्यूजीलैंड च गए, फिर ऑस्ट्रेलिया, मेरे नाल चब्बर साहब सी उत्थे, मेरे नाल चिंजर साहब सी और इत्थे साडा वफद आया जिहदे च काफ़ी मेरे साथी ने। और एक गल कर लई आए हैं कि पंजाब साडे की कीता सी जिहड़ा असी दसण च नाकामयाब रहे, असी दस नहीं सके और की असी करना है और तुहाडा की विचार है पंजाब बारे, तुहाडे विचार जानने लई, तुहाडे सुझाव लैण लई, उह तुहाडे नाल इंटरैक्ट करन लई कि इह पीढ़ी जिहड़ी एक बड़ा वड्डी पीढ़ी उत्थों पलायन कर गई जिहड़ी पिछले समें विच, उहनां नाल इंटरैक्शन करन लई, उहनां दे विचार जानन लई और उहनां दी सपोर्ट लैण लई असी इत्थे इस धरती ते पंजाबियों नूं मिलण लई आए हैं।
7: सर साहब, चलो पंजाबी सपोर्ट करनगे जां नहीं करनगे जां की सुनिया

हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट। सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक

वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार। ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी। इत्थे सारे लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सीधे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496। ओइसे स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।